किसने चके हैं दोस्तों, फानी बूतों के नम कियात। ऐ मेरे खालिक़े हयात, तेरी खुशी है सद हयात।